जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

नाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अव

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: मंत्रा।
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: आतिफ असलम लाइव इन द यूके।
4: सोचता हूं कि वो कितने मासूम
5: थे। The O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
6: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
7: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: of a lifetime or a trip to visit loved ones. Call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
1: No more worries for me or you.
2: Southall Travel, at all protected.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: ZTV HD पर देखिए तुमसे तुम तक
5: बस कुछ ही दिन और रहो फिर हमारा भी मंडप सजेगा
4: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर
5: हार ये बार अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है
6: मैं ही राजीव भाटिया हूं
4: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
7: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 0797686944.
8: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
9: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
10: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
9: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
10: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
11: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208907244 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244
12: The people of Britain have bought loads of noise cancelling headphones With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 28.9% APR representative variable and 28.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
13: Have you spotted anything?
14: Only seagulls. Are you sure this beach is a nature reserve?
13: Well, the sign said nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
14: You sure that sign didn't say naturists?
13: Oi, this is a nudist beach!
14: Ooh. Now, where are my binoculars?
13: Cheryl!
15: Struggling to read in the sun? Get 2-for-1 at Specsavers and make prescription sunglasses your second pair. From £70 with standard single vision lenses to the same prescription. Terms and conditions apply. See in store for details.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय। इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का। सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार।
3: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर

0: होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
1: द ब्रेकफास्ट प्लान Perfectly brewed by you. Donnie Brasco on Leica Radio.
2: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA. Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: One appears on page one of Google.
1: The other doesn't.
0: Guess which one gets the customer?
1: The truth is brutal.
0: The first page of Google gets the business.
1: Everyone else gets what's left.
0: So here's the real question.
1: When your customers search for what you sell, do they find you?
0: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
3: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
2: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
5: Because you bought your robot vacuum on your Barclay card, you got 0% interest for up to 24 months, which makes watching it, hypnotically sweeping up your crumbs, even more satisfying. Oh, missed a bit. What you buy is your business. Helping you pay less interest is ours. Barclay card, backing your future. Subject to financial status, new customers only. Representative example, 24.9% APR representative variable, 24.9% purchase rate per annum based on £1,200 credit limit. T's and C's apply.
6: Hi, this is Saleem.
7: Hi, this is Saleem.
6: Hi, this is Suleiman.
7: Hi, this is Suleiman.
6: From Saleem Suleiman. Keep listening to...
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 17th May. Massive deals, unbeatable discounts, and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashirwad, and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest quality ice cream, and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on 13th and 14th. Free membership, free parking. Open 24/7.
1: Eviction? Tenant dispute, property ka masla. Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
2: ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
3: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627 अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है Al Noor, taste the difference.
4: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. A Leica Radio Classic plays now.

0: absolutely loving the sound. This one, Gina Lagahu. Got to say very good afternoon to Nidhi and Dahana. Thank you very much, Nidhi, for your lovely message. And thank you for all of your votes for today's Choice Active. Also, your answers for today's Filmy Scramble. You're smashing it. More fantastic music on its way.
1: Sponsored by Pepe's. Introducing a new flavor to add to your flame-grilled order. Smoky barbecue. It really is flavor you'll savor.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: The people of Britain love their fancy blenders. They've bought loads of them. And luckily, if they bought them with Barclaycard, they earned rewards. In fact, they'll earn rewards on all their eligible purchases.
5: It's a more convenient way to consume your fruit and veg.
4: What you buy is your business. Giving you rewards on purchases is ours. Barclaycard, backing your future. 28.9% APR representative variable subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: अरे चंचल कुमारी साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया लॉन्ग टाइम कैसी हो तू
11: खातून कौन थी
12: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस
11: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी इस हर पति एनिमल
13: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो पति पत्नी और वो दो इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th of May.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
15: आज सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे
16: BAPS मंदिर नो ओपनिंग एंड स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
15: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
16: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली और जर्मनी साथे
15: दर्शन पण और यूरोप पण
16: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ही बुक करो स्टार टूर साथे
15: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स
16: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
17: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
18: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
17: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
19: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
20: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
19: Call today on 01923-883-100.
20: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
19: Book with confidence.
20: We're at all protected.
21: Street Foods in Chelmsford, an authentic Indian takeaway in Chelmsford. Street Foods also specialise in catering orders. Call 0561 359 604. That's 0561 359 604 to place your order.
0: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: premier tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Unity Cup 2026 is coming to the Valley Charlton Athletic, featuring your Indian national football team. On Tuesday, May the 26th, Nigeria face Zimbabwe, then Jamaica's Reggae Boys clash with India's Blue Tigers, with Punjabi MC bringing the fire. Saturday the 30th of May, the huge final with live Afrobeat, reggae and Bollywood stars. Get tickets now at unitycup.com. Use the code LIKA15 for 15% off. Exclusive radio partners, Leica Radio.
4: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
5: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
6: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
7: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
6: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
7: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
6: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All atoll protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
9: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
10: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।